0: Luister Radio SBS in Midden-Nederland en in Zuid-Holland en ver daarbuiten in je auto en thuis op je DAB Plus Radio.
1: बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

हमारी सभी सुनने वालों की सेवा में मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और आदा बरसू। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्त लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी के दुख और हमें हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां है सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है तहे दिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम की तरफ से। सुनने वालों आज बीफ है बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन है। आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 030-22-66-66-11। बाकी हर एक इंफॉर्मेशन के लिए इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 030-22-65-65-60। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में सुबह सुबह लो शिव का नाम। पेश किया जा रहा है हमारे सभी सुनने वालों सभी भक्त प्राणियों के लिए।

भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए सुबह सुबह लो शिव का नाम हरिहरन के आवास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए हैं। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस वक्त प्रोग्राम को सुनते him. सभी सुनने वालों को वेलकम स्वागत किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। चलिए अगला भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है नरेंद्र की आवाज में आप सुनते ही रहना।

अरिंदर के आवास में ये सुंदर सा भजन आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को जरूर और जरूर सुनते ही रहना। अगला भजन जो अब की बार प्रोग्राम में पेश होगा, हम आपको ले चलेंगे अनूप जलोटा जी की ओर। आज की इस भजन यात्रा के प्रोग्राम में ये सुंदर सा भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो एसबीएस के जरिए अनूप जलोटा जी की आवाज में ये सुंदर सा भजन बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। चले अब की बार हम आपको ले चलते हैं खास सुंदर और सुंदर भजन जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुंदर सा भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में आपकी बार पेश किया जा रहा है। मधुस्मिता की आवाज में आप सुनते ही रहना।

सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अब की बार ब्रह्मा की आवाज में एक सुंदर भजन पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए सुंदर भजन बस प्रोग्राम में ब्रह्मा कुमारी की आवाज में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में हमारी सभी सुनने वालों जो खासतौर पर स्टूडियो की ओर तार किया है आप सभी के तार के लिए लाख लाख धन्यवाद और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना।

कुमार के आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए अब की बार अनुराधा पोर्टवाल जी की आवाज सुंदर भजन प्रेम कुमार की आवाज में आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चलिए अब की बार अनुराधा पोर्टवाल जी की आवाज में एक सुंदर सा भजन।

सभी सुनने वालों की सेवा में है। बस पेश की गई है रेडियो SBS के जरिए। चलिए प्रोग्राम में आरती भजन की ओर हम आपको ले चलते हैं और आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारी तरफ से, हमारा पूरा परिवार की तरफ से भी, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी जो आज नौकरी करने वाले है, काम करने वाले है, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है शंकर महादेवन और लता मंगेशकर की आवाज में।

रेडियो SBS के जरिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म डार्लिंग अदनान सामी एंड तुलसी कुमार प्रोग्राम में।

सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और रोजाना की तरह आज भी बहुत सी सुन वालों बस प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का, जो सालों से आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। उदित नारायण हम आपको ले चलते

शुक्रिया एडवांस में। ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो उम्मीद है कि उदित नारायण की आवाज में गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया। रेडियो एसबीएस के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले अब की बार शान एन महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना।

बस और अनुराधा पोटवल के आवास में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई है। सुन वालो रेडियो SBS का वेबसाइट रेडियो SBS.NL उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं और ये प्रोग्राम सभी इंटरनेट रेडियो के जरिए भी सुनाई देता है।

पंकज उदास और अनुराधा पोटवाल की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए हम आपको ले चलते हैं फिल्म दे दनादन, मिका सिंह, डोमिनिक और स्टार

रेडियो SBS की जरिए फिल्म भूल भुलैया नंबर 2, उसी फिल्म से गाना पेश की गई डी ताली। चले प्रोग्राम में फिल्म वेलकम की ओर।

शर्मा और ऐश्वर्या की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई दबंग फिल्म का नाम था। चलिए प्रोग्राम में अब की बार ये गाना की ओर है, बार बार देखो फिल्म का नाम।

अब बच्चे के प्रोग्राम में 6 मिनट वेटेड हो चुका है। सुन वालों आज बीफे बृहस्पतिवार 28 तारीख में एक प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी सुन वालों को शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। आज का मौसम खूबसूरत सुहाना मौसम है, धूप ही धूप का मौसम, गर्मी सा मौसम होने वाले है। टेम्परेचर कहीं कहीं 28 डिग्री 29 डिग्री 30 डिग्री होने वाले है। तो फिर भी आप सभी सुन वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। यहाँ से पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप सभी सुन वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। और पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम जो है जरूर और जरूर सुनते ही रहना। ये प्रोग्राम बहुत सी सुन वालों बस गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ हमेशा और हमेशा प्रोग्राम को सुनते हैं। तो आप सभी सुन वालों को भी गर्मा गर्म कॉफी चाय के साथ भी स्वागत किया जा रहा है। तो चले जबकि 9:07 व्यतीत हो चुका है पहला पुरानी फिल्म का गाना की ओर। किशोर कुमार, किशोर कुमार प्रोग्राम में होगा गाना जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो मीठे की ये गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। फिल्म दौलत, उसी फिल्म का गीत आज की ये प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। हम आपको ले चलेंगे आज की प्रोग्राम में हमरास फिल्म का गीत की ओर, सॉन्ग बाय महेंद्र कपूर और गाना का बोल है तुम अगर साथ देने का वादा करो। एस पर आपने चुन किया है संगीत भरी स्टेशन का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का गीत अभी आपने सुना, जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl से वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी आप हमारा प्रोग्राम को सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों बस मोबाइल फोन के जरिए मोबाइल टेलीफोन के जरिए हमारा ये प्रोग्राम भी सुनते हैं और उसी वेबसाइट पर तरह तरह की खबरें, न्यूज, मौसमी समाचार और आपका दाह हॉरोस्कोप यानी कि ज्योतिष शास्त्र भी होता है। बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो जाकर अपना दाह हॉरोस्कोप को भी देख रहे हैं अपना ज्योतिष शास्त्र रेडियो SBS का वेबसाइट पर रोजाना आपका दाह हॉरोस्कोप इसी वेबसाइट पर होता है radio.sbs.nl। जरूर अपना मोबाइल फोन पर आप जाइए इसी वेबसाइट पर। गाना जो अबकी बार प्रोग्राम में पेश किया जाएगी, हम आपको ले चलते हैं खास तौर पर द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर। मुकेश जी की आवाज में एक गाना बस प्रोग्राम में आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले चलते हैं। अबकी बार

रेडियो SBS के जरिए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आशा उम्मीद है गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए एक बार फिर से मरहूम मोहम्मद रफी की ओर हम आपको ले

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चलिए अब की बार मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है। लागी तुम से लगन साथी झूठे ना, गाना जो प्रोग्राम में अब की बार पेश किया जा रहा है।

की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। लागी तुमसे लगन साथी झूठे ना, काफी पुरानी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता मंगेशकर एक बार फिर से प्रोग्राम में अब की बार ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में लता मंगेशकर की आवाज में खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना। आज के प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी सुनने वालों की सेवा में चले गाना किशोर कुमार की आवाज में आज के प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

हिट की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई एक पाकिस्तानी मूवी का गीत, एक पाकिस्तानी फिल्म का गीत उस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। नहीं के बाद हम आपको ले चलेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद और गीता दत्त की आवाज में गाना जो पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में। और गाना का बोल है तुमसा मीत मिला।

मीट मिला रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना। चलिए अपनी बार द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर हम आपको ले चलते हैं और माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

स्टैंड अप की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई। रोटरडम शहर का रहने वाला राज ये खास गाना आज की प्रोग्राम में सुनना चाहते थे और इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए पेश की गई है। 10:00 प्रोग्राम में 11 मिनट व्यतीत हो चुका है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सबीना रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना भी हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और एक गाना मोहम्मद रफी के आवाज में मांग किया है। झुक गया आसमान फिल्म का नाम

झुक गया आसमान फिल्म का गीत भी हुआ है मोहम्मद रफी की आवाज में, ये गाना भी आपने सुना। रोटरडम शहर की रहने वाली सबीना ये खूबसूरत गाना आज की प्रोग्राम में मांग किया, जो इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए बस पेश की गई है। आशा उम्मीद है गाना आपने सुना और काफी पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है। आपको खबर किया जा रहा है कि इस साल मिलन साइड पार्क जनहा शहर में होगा 21, 22 and 23 अगस्त। मिलन समर फेस्टिवल .nl वेबसाइट पर आप जाइए सभी इंफॉर्मेशन के लिए, क्राम फरहूर के लिए या तो अपना टिकट के लिए। एक गाना एक फिल्म त्रिशूल, त्रिशूल फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में आपकी बार पेश किया जा रहा है नितिन मुकेश एंड लता जी की आवाज में।

Nitin Mukis Aure Letta Jiki Avans Meje Cannabis Program Episki Gaye Film Trisul Usi Film Ga Ganabi Abni Suna Jo Radio SBS Ki Serie Aap Sabhi Sudwalu Ki Seva Me Bas Pishki Gaye Hem चले प्रोग्राम में द माइटी मुकेश की ओर माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है

पद्म श्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। सुन वालों स्टिक्टिंग संदेश बारन ये खबर कर रहे हैं कि हर साल की तरह इस साल भी द 24th All Together Festival यानी कि मिलन होने वाले हैं और वो भी बारन शहर में और ये होगा शुक्रवार शुक्रवार 5 तारीख जून फ्राइडे 5 जूनी एंड सैटरडे 6 जूनी ढेर सा ग्रैम्पियस यहाँ पर रहेंगे और ढेर सा पोडियम प्रोग्राम ढेर सा म्यूजिक ग्रुप यहाँ पर रहेंगे और खाने पीने के लिए हर एक सामान यहाँ पर रहेंगे और स्पेशल आपको खबर किया जा रहा है 7 जूनी शाम में 5 बजे से लेकर के रात्रि में 7 बजे तक 2 घंटा लगातार म्यूजिक ग्रुप एक्सप्रेस यहाँ पर रहेंगे मैं लेडी संजना मुका एंड मिस्टर ब्लैक ग्रेटेस्ट एंट्री ग्रेटेस्ट पार्किंग और ये होगा पेकिंग टाउन बारन हर साल की तरह इस साल भी ऑल टुगेदर फेस्टिवल होने वाले हैं और वो भी स्टिक्टिंग संदेश बारन की जरिए Altijd heel gezellig. Bus Radio SBS की जरिए reclame जरूर सुनते ही रहना. लेकिन मत भूलना 5 एंड 6 जूनी All Together Festival मिलन होगा पेकिंग टाउन बारन में. चलिए प्रोग्राम में आपकी बार मोहम्मद रफी की आवाज में ये

रफी, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उसे सुनने वालों है जो इस वक्त रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, सभी को वेलकम, स्वागत किया जा रहा है जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो SBS का। एक गाना अब की बार होगा प्रोग्राम में आप सभी सुनने वालों की सेवा में, गाना जो आज ही प्रोग्राम में पेश होगा किशोर कुमार एंड आशा जी की आवाज में। हाँ, और मुझे मालूम है कि आपको गाना काफी पसंद है, तो स्पेशल आपके लिए किशोर एनाशिया।

0: अशोक बीटे की गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई।
1: कैसा

किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुन वालों की सेवा में। सुन वालों चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुन वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आमने सामने। और आज की पुरानी फिल्म में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी और आखिरी गाना पेश किया जा रहा है।

राज्य की आवाज में ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। चले प्रोग्राम में अनुराधा पोटवाल की ओर हम आपको ले चलते हैं। अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है फिल्म का नाम आंखों में तुम हो।

अनुराधा पोटवाल की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में। आपको पहले भी कहीं देखा है फिल्म का नाम और उसी फिल्म से ये गाना।

पोर्टवेल की आवाज में गाना पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में फिल्म का नाम आपको पहले भी कहीं देखा है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। चले प्रोग्राम में अब की बार अभिजीत एंड साधना सरगम की ओर।

की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और हमारा आज का प्रोग्राम जरूर और जरूर सुनते ही रहना जहां जहां पर भी आप सभी इस प्रोग्राम को सुनते हैं। चले प्रोग्राम में अब की बार एक गाना सोनू निगम की आवाज में द फिल्म मदहोशी पेश किया जा रहा है।

निगम के आवास में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। चलिए अब की बार गाना जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है वजीत और श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

देने वालों की सेवा में। चलिए कुमार सानू और अलका जी की ओर मैं खिलाड़ी तू अनारी फिल्म का नाम अब की बार गाना जो पेश किया जा रहा है।

0: नवस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आंसरों भी देखिए गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गई है।
1: कल तक मुझे थी ना खबर।
0: अब की बार सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में

सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में ये गाना पेश की गई, मैंने दिल तुझको दिया। रेडियो वेस्ट में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। वेबसाइट होता है रेडियो SBS.NL, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड के जरिए कंप्यूटर के जरिए भी आप सुन सकते हैं। बहुत सी सुनने वालों आपके साथ रेडियो SBS का प्रोग्राम इस वक्त

फिल्म का नाम कर्स, एक फिल्म जो 2002 में रिलीज किया गया है। फिल्म कर्स का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। अब की बार एक गाना पेश किया जा रहा है सोनू निगम और अनुराधा पोटवाल की आवाज में।

रेडियो SBS की जरिए सोनू निगम और अनुराधा पोटवल की आवाज में गाना प्रोग्राम में पेश की गई। हम आपको ले चलेंगे अब की बार अनुराधा पोटवल और उदित नारायण की ओर।

क्लास में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 03-262-66-66-11। इसी तार की नंबर पर टेलीफोन नंबर पर हमेशा और हमेशा आप तार कर सकते हैं। तुलसी कुमार एन राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

महालक्ष्मी आयर की आवाज में गाना बस पेश की गई शादी का लड्डू फिल्म का नाम रेडियो SBS के जरिए गाना भी आपने सुना।

रेडियो SBS की जरिए सुनिधि चौहान की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

रेडियो SBS की जरिए उदित नारायण और अलका जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

माइटी मुकेश की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश के बाद चले प्रोग्राम में लता मंगेशकर की ओर हम आपको ले चल

में आइडो फिल्म बसेरा उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। चले मोहम्मद रफी एंड लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है जेवल थीफ।

0: हर रोते को हंसा हंसा के गाए जा तू, जब तक है दम मतवाले हम मतवाले तुम।
1: किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322 66 66 11, इसी तार की नंबर पर स्टूडियो की ओर आप तार कर सकते हैं।

सुमन कल्याणपुर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, वेबसाइट होता है radio.sbs.nl। उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं।

सुरेश वत्कर और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। शहरी तरफ से ये प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी एन लता जी की आवाज में आपकी बार ये गीत पेश किया जा रहा है। फिल्म का नाम है काली टोपी लाल रुमाल।

पद्मश्री मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस पेश की गई। काली टोपी लाल रुमाल उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। महेंद्र कपूर और उषा खन्ना की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में अब की बार पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS की जरिए जरूर सुनते ही रहना।

0: मैं चलता हूँ, मुझे जाने दो, मैं चलता
1: हूँ। सुनो हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। आज के प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है।
0: मैं
1: आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब। मैं हूँ आपकी आरजे अंशिली करमलाल, जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर पे। हेलो अलमाल, दिस इज यू आरजे अंशिली करमलाल, तो यू वार्ट वेलकम हेट इन इट प्रोग्राम गीतों के लहर। Wilt reageren? Kan het altijd. Surf naar de website www.radiosbs.nl of bel gerust met 030-262-6611. En voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Het eerste liedje van vandaag is...

0: दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, क्वाम द प्राचीन फिल्म धड़कन फन अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी एंड सुनील शेट्टी. Dit liedje is gezongen door Nusrat Fateh Ali Khan. Gaan we verder met Tequila uit de film Bala.
1: Bala bhaiya ki subah ki khushi mein pesh hai Sony Band ki khaas peshkash. Suniye.

जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले तब गुल खिले खिले खिले गुल खिले, जब दिल मिले तब गुल खिले, जब गुल खिले तब दिल मिले, मिले मिले मिले मिले दिल मिले।

फिल्म यादें से आपने सुना उदित नारायण और आशा भोसले की आवाज़ में जब दिल मिले मिले मिले दिल मिले। और अब आप सुनिए 14 फेरे से है तू।

टाइटल सॉन्ग फिल्म दीवाने का आपने सुना कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याचनिक की आवाज में। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म एहसास से। तुमसे मिलकर हुआ है एहसास एक नया नया।

आप हमारी जान बन गए। अज़ीज़ कौर और मिथुन की आवाज़ में आपने सुना खुदा हाफिज से। अब आप सुनिए कृष्णा कोतिश से। शान और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुनिए बिंदास आहा।

फिल्म प्यार तो होना ही था से आपने सुना कुमार सानू की आवाज में, जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे। और अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है, जगजीत सिंह की आवाज में, फिल्म तुम बिन से आप सुनिए, कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे।

0: दिल के किसी कोने में छू लिया है किसी ने तुम्हें।
1: तुम यहां क्या कर रहे हो?
0: बस देख रहा हूं।
1: क्या चाहते हो?
0: मेरे सिवा कोई यह चेहरा कभी ना देखे। मैं उम्र गुजार दूं इन आंखों में।

ऐ दिल इतना बता दे, बेहतरीन गाना आपने सुना हरे हरन की आवाज़ में फिल्म दीवाने से। अगला गाना प्रोग्राम की तो के लहर में है रूही से, सचिन जिगर और मिक्का सिंह की आवाज़ में आप सुनिए भूतनी।

फिल्म फिजा से आपने सुना अलका याचिक और उदित नारायण की आवाज में आजमाहिया, और अब आप सुनिए जस मानक की आवाज में फिल्म सरदार का ग्रैंडसन से जीने करदा।

कैसा है चिनाव का, इस गजंगा दौर किशोर कुमार। En uit de film Chalti Karam Gaadi komt gezongen door Kishore Kumar weer. Ik lerki bhigi bhagi si.

इस पल मैं हूँ या तुम हो, गजों दो सोनू निगम है श्रेया घोषाल, बस और द फिल्म आजा नचले। And now the film An Evening in Paris comes to Sangha Do Sharda. Lecha, lecha, lecha, mera dil.

0: हो गए।
1: हम आप में कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया इज द टाइटल सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म हम तुम पे मरते हैं, खसोंदोर लता मंगेशकर एंड उदित नारायण। चोरी चोरी सपनों में आता है कोई इस आयु द फिल्म चल मेरे भाई एंड इस खसोंदोर अलका याचिक एंड अभिजीत। चल मेरे भाई इज अ फिल्म फन संजय दत्त, करिश्मा कपूर एंड सलमान खान। चोरी चोरी इज इट फोन लीजिए इन het programma Gietonkele Her via Radio SBS.

जो नहीं तो कुछ भी नहीं इस सॉन्ग दूर ग्लेन जॉन एंड कम टू द फिल्म वो लम्हे। Gaan we daar verder met Birthday Bash, gezongen door Yo-Yo Honey Singh uit de film Dilli Wali Zalim Girlfriend.

हमको मालूम है इश्क मासूम है, दिल से हो जाती है गलतियां। सोनू निगम और साधना सरगम की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म जाने मन से। और अब आप सुनिए उदित नारायण और श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म विवाह से, मुझे हक है।

जन्म जन्म जन्म साथ चलना यूं ही। अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में आपने सुना फिल्म दिलवाले से ये बेहतरीन गाना। और अब आप सुनिए फिल्म फना से देखो ना, सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में।

मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे गालों पे है काला काला तिल, इस uit de film लज्जा एंड इस गजंग दो सुनिधि चौहान एंड अलका याचनिक. गाँव दा फेर दर मैं uit de film दिल धड़कने दो, अतलीचे गल्ला गुड़िया.

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।